सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कई भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी ओत पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा वै बैठा कहूं सिमट प्यो शंकरी कैठा सग

काला दुष्ट अरिष्ट टने तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तन कुमो हर हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शास वै सके ना कोई।

दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदयावे ताय सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हुए सहाय दसा

0: शो दिया लांटा औरंगजेब कह दिया।
1: गुरु प्यारे औरंगजेब जुल्म दा दूजा नाम है। जदों औरंगजेब दा नाम जबान ते आउंदा ना ते एटोमैटिक गुरु प्यारे एदा जालम पुणा एदा निर्दयी पुणा इस अखां दे सामने आ जांदा है। ये अपने भरावां दा अपने प्यो दा सका ना बन सकिया। हुण गुरु प्यारे जेल दे विच प्यो आ किथे पा चलिया सी विचारा पता ही है इहने मारी जाणा। हुण इहदा इहने भुखा त्याया मार के रख के अपने प्यो नूं मारिया किवें उहनूं पीण वास्ते पाणी ना देना रोटी भी खेण देनी वह भी जहर ना पा के स्लो पोइजन पा के। हुण एक दिन इहदा बाप चिट्ठी लिखदा इहनूं कहिंदा पुत्रा तू किद्दां दा मेरा पुत है। जिस हिंदुस्तान दे विच आपां रहिंदे आ ना जिन्हां नूं असीं काफर कहिंदे आ हिंदू लोक वो अपने नालों ते वह चंगे आ अपने मरे हुए पितरां नूं पाणी दिंदे आ ते तेरा जिउंदा जागदा प्यो इस वेले कैद दे विच है तू उहनूं पाणी दी घुट नूं दे सकदा। इहने चिट्ठी पढ़ी है और एक चिट्ठी आप लिखता कहिंदा बापू मेरे कोल इन्ना वक्त नहीं मैं तेरिया चिट्ठिया पढ़ा तेनू पानी की प्यास लगी आ तेरे वास्ते पानी की बूंद नहीं। जिस शाही दे विचों तू कलम भिओ के चिट्ठी लिखी है ना उस शाही का सूप पी के अपनी प्यास बना ला। हुण शाही का पानी पी के कहिंदा अपनी प्यास बजा ला। ऐडा जालम ऐडा हंकारी अपने भरावां वल्लों वेला होया इहदा अपने राज भाग दे विच इहदे मुसलमानां वल्लों इहदा विरोध किया गया कहिंदे तू तो बड़ा अत के तू तो अपने भरावां नूं नहीं प्यो नूं नहीं बख्शिया। हुण इह अपने जुल्मां दे उत्ते पर्दा पाउण वास्ते गुरु प्यारिओ बंदा जिहड़ा जालम होवे ना उह फिर धार्मिक होण दा भी ड्रामा करदा है। जिहने जुल्म वध कीता होवे जिहड़ा बेईमानी कीती होवे रिश्वत कीती होवे ना वह फिर वो पैसे भी गुरुद्वारे चढ़ा भी बलै बाबा मेरे इस जुल्म तू भी शरीक बन मैं कला ही क्यों बना थोड़े बहुते तैनू भी दिने। हुण सतसंग जी इन्हें अपने जुल्मां दे उत्ते पर्दा पाउण वास्ते उस समय का 7,16,000 रुपया मक्के भेजिया क्यों मक्का शरीफ उन्होंने पाक पवित्र दरगाह है भी उत्थे काजियां नूं गंढ दे उत्थे रिश्वत दिने ते गुरु प्यारे लेकिन उत्थे दे काजी ने इहदी इह रिश्वत का 1 रुपया भी लैण तों इनकार कर दिता कहिंदा तेरे वर्गे पापी की चढ़ावा इत्थे नहीं चढ़ सकता। वाह मुबारक है गुरु प्यारे किते असीं भी कह सकते हैं अपने

तेरा हक नहीं दुनिया के उत्ते जीण दा, ते तू गुरु घर चढ़ावे चढ़ाने उपे रहो, असी सब कुछ सानू सब कुछ आ जमया असी ले जाने, साडे गुरुद्वारे वड्डे बनने चाहिए आ, जिदा की मर्जी बेईमानी का कमाई जी है ना। हुण गुरु पेरो काजी साडे नाल चंगे नहीं हुए, उत्थे दे काजी ने मक्के शरीफ दे काजी ने उत्थे दी वड्डी दरगाह दा जिहड़ा मुखिया सी उहने इहदी रिश्वत दा रुपया लैणो ना कर दित्ती, कहिंदे सानू नहीं तेरा पैसा चाहिए, पर सानू सब कुछ हजमया कोई गल नहीं, गुरु महाराज कृपा करे सानू भी ए साडी कौम नू ए समत बख्शे। हुण सतसंगत जी इहने अपना हिंदुआं मुसलमानां दे दिल जित्तण वास्ते हिंदुआं दे उत्ते जुल्म कीता। हुण सतसंग जी दे बचपन दी इक होर मैं तुहाडे नाल घटना सांझी करां, बचपन दे विचों किड्डा छात्र सी ए, इहदा प्यो शाहजहान हिंदुस्तान दा बादशाह अपने सारे परिवार नू लैके ते दिल्ली दी जिहड़ी शाही मस्जिद सी जामा मस्जिद लाल किले दे सामने पास उत्थे नमाज पढ़न वास्ते जाया करदा सी। इक दिन नमाज पढ़न वास्ते गए ते कुदरती गल है धार्मिक स्थानां ते आपां सारे जोड़े बाहर ला के जाने आ, और इस शाहजहां ते सारे परिवार ने जोड़े बाहर ला दिते आ, बाकी सारा परिवार अंदर नमाज पढ़न वास्ते चले गया जुम्मे वाले दिन। ते जदों प्यो आके देखता है भी औरंगजेब नमाज पढ़ नहीं गया, वह जोड़िया च बैठा, पूछया औरंगजेब तू क्यों नहीं नमाज पढ़ने वास्ते गया, कहिंदा बापू इस शाही मस्जिद

हर हर नाम बोहित है कल जुग, खेवट गोर शब्द तरह। मेरे मन हर गुण हर उचरह, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, मिल संगत पार परहो रहाओ। काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाइये उपदेश जन करहो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर

अमृत हर मीठा हर संतह चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे साब बेख रसहो। राम नाम रस राम रसायन रा

गुरमत नानक हर भजहो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल महला चौथा। आवहो संत मिलहो मेरे भाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम बोहित है कल युग, खेवट गुर शब्द तरो। धन वाहिगुरु साहिब जी, धन वाहिगुरु साहिब जी।

ने चले है व्यापारी। मान कर बैल सुरत कर पैंडा, ज्ञान गोन पर डारी। कैद कबीर सुनो रे संतो, निभी खेप हमारी। हरी कलवार गवार मूड़ मत, उल्टो पवन फिरावो। मन मत वार मेर सरपाठी, अमृत धार चुआवो। बोलो भैया राम की दुहाई, पीवो संत सदा मत दुर्लभ। सहजे प्यास बुझाई रहाओ।

पावै तिसे पियाई। नगरी कै नौ दरवाजे धावत बरज रहाई। त्रिकुटी छूटै तस्वां दर खुलै तामन की वापाई।

अनुराव लालच झूठ विकार महामद ए विद्योद बिहान कह कबीर अंत की बेर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग न कछ ले जाए रहाउ। देरी बैठी मेहरी रोवे द्वारे लो संगमाए मर हट लग सब लोग कुटंब मिल हंसे केला जाए। वै सुत वै बित वै पुरपाटन बहुर न देखे आए कहत कबीर राम की ना सिमरो जन्मे अकारथ जाए।

खाट कर्म कोलसन जुगत है, हर भगत हृदय नाहि, चरणार बिंद न कथा पावै, सुपच तुल समान। अरे चित चेत चेत अचेत, काहे नाम बाल्मी कै देख, किस जात ते के पदय अमर्यो, राम भगत विशेख रहाउ। स्वान शत्रु अजात सब ते, कृष्ण लावे हेत। लोक बपुरा क्या सरा है, तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगुला लुभत कुंचर, गए हर के पास। ऐसे दुर्मत निस्तरे, तू क्यों ना तरह रविदास। राग भैरो महला पहला, कर पहला चौपदे को अंकार। सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त, अचूनी सैपं गुर प्रसाद। तुझते बाहर किशु ना होए, तू कर कर देखे जाने सोए। क्या कहिए किश कही ना जाए, जो किश अह सब तेरी रजाए राव। जो किश करना सो तेरे पास, किसे आगे कीचे अरदास। आखण सुनना तेरी बाणी, तू आपे जाने सर्ब विडाणी। करे

अरूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जमजालो। प्राणी हर जप जन्म गयो, सा शब्द बिन कबो न छूटस, बिरता जन्म पयो रहाओ। तन में काम क्रोध हों ममता, कठिन पीर अत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तार तू तारी।

जन्म पदार्थ मन मुखहारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया। रहे उदास आस निरासा, सहज त्यान बैरागी। प्रणवत नान गुरमुख छूटस, राम नाम लिवलागी। पैरो माला पहला, पूंडी चाल चरण कर खिसरे। तुचा दे कुमलानी, नेत्री धुंद करण पै बैरे। मन मुख नाम ना जानी,

जिहवा रंग नहीं हर राति, जब बोले तब फीके। संत जना की निंदा व्यापस, पशु भये कदे होए ना नीके। अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मिलाए। जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए। अनको दार कर

लगलाये मन रे राम भगत चित लाइये, गुरमुख राम नाम जप हृदय सह स्थिति कर जाइये। रहाउ परम भेद पहो कबू न छूटस, आवत जात न जाने बिन हर नाम को मुक्त न पावस, डूम हुए बिन पाने। धंधा करत सगली पात खोस, परम नाम मिट सकवारा, बिन गुर शब्द मुक्त ने काबही अंधले तंद पसारा।

जगन हो मूर्णता पूजा दे दुखी निर्दुख सहे राम नाम बिन मुक्त न पावस मुक्त नाम गुर मुख लहे। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे ने फल मर भ्रम ना रहाओ। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहाँ प्राणी। राम नाम बिन वर

जाको रखे अपनी शरणाई, साचे लागे साचा फल पाई। रे जिन कैस्यु करो पुकारा, हुक्मे हुआ हुक्मे वर्तारा रहाउ। एह आकार तेरा है तारा, खिन में बिनसे करतन लागे बारा। कर प्रसाद खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया।

मैं कामण मेरा कंत करतार, जेहा कराए तेहा करें शिगार। जहां तिस भावे ता करे भोग, तन मन साचे साहिब जोग। रहाओ उस्तत निंदा करे क्या कोई, जाय आपे वरतै एको सोई। गौर प्रसादी प्रमुख साई, मिलोंगी दयाल पंच शब्द बजाई। प्रणत नान करे क्या कोई, जिसनो आम मिलावे सोए। पैरो माला तीजा सो मोन, जे मन की दुविधा मारे, दुविधा मार ब्रह्म बिचारे। इस मन को कोई खोजो पाई, मन खोजित नाम नौनद पाई। रहाओ मूल मोह कर करते जगति उपाया, ममता लाए परम पोलाया। इस मन ते सब पिंड पराना, मन के विचार हुकम बुझ समाना। कर्म होवे गुरु कृपा करे, ए मन जागे इस मन की दुविधा मरे। मन का स्वभाव सदा बैरागी, समय वसे अतीत अनुरागी।

पारितारणहारम्। गौर प्रसादी हर नाम संभाल, साध ही निभै तेरे नाल रहाउ। नाम न चित मन मुगा वारा, बिन नाम कैसे पावै पारम।

मैं जो टाका है आपे करता देवे सोए, नानक नाम प्राप्त होए। पैरो महला तीजा गोविंद प्रीत, सनकाद क्यों धारे, राम नाम शब्द विचारे। हर जीव अपनी कृपा तार, गुरमुख नाम में लगे प्यार। रहाओ

राम नाम जन पाले सोए, पूरे गुर ते प्राप्त होए। हर का भाणा मन्ने से जन प्रवान, गुर के शब्द नाम निशान। सो सेवा जो कर ले आतार, नानक गुरमुख नाम प्यार। पैरो महला तीजा, काल युग में बहु कर्म कमा है। ना रुत ना कर्म थाय पा है, कल युग में राम नाम है सार। गुरमुख साचा लगे प्यार राव,

अपने शब्द है रोग न जाई रहाओ। सिमरत शास्त्र पढ़े मुन के ते बिन शब्द सुरत न पाई, त्रैगुण सभे रोग व्यापे ममता सुरत गवाई। एक आपे काट लय प्रभ आपे, गुर सेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधान पाया सुख वस्या मन आय। चौथी पदवी गुरमुख वरतें, तिन निज कर वासा पाया, पूरे इस्त गुर कृपा कीने विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक, जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक ने चल साचा एको, ना हो मरे न जाया पैरो महला तीजा। मन मुख दुबिदा सदा है रोगी, रोगी सकल संसारा, गुरमुख बूझे रोग गवावें गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत्संगत मेलाए, नानक तसनो देव डियाई, जो राम नाम चित लाए रहाओ। ममता काल सब रोग व्यापे, तिन जम की है सरकारा, गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवे, जिन हर राख्या और तारा। जिन हर का नाम न गुरमुख जाता, से जग में काहे आया, गुर की सेवा कदे न कीने वृथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वट पागी।

साची भगत करें दिन राती ता तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई, बिनस्त गुर सेवे भगत न पाइये, पूरे भाग मिले प्रभु सोई राहो। मन मुख मूल गवावें लाभ मांगे, लाहा लाभ कि तू होई, जमकाल सदा है श्री ऊपर, दूजे पाए पत खोई। बैले पेख पवे दिन राती, होमे रोग न जाई, पढ़ पढ़ लूचे बाद बखाने, मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेवै परम गत पावै, नाम मिले वडियाई, नानक नाम जिना मन वसिया, तर साचे पत पाई, पैरो माला तीजा। मन मुख वासा नहीं उतरै, दूजे पाए खुआए, उधर नहसान न भरिए, कबहू तृष्णा अगन पचाए। सदा आनंद राम रस राते, हृदय नाम दुबदा मन भागी, हर हर अमृत पी तृप्ताते रहाओ। आपे पार ब्रह्म सेठ जन साजी, सिर सिर तंदे लाए, माया मोह किया जने आपे, आपे दूजे लाए। तेसनो के कहिए जे तू जा होवै, सब तुदे माए समाए, गुरमुख ज्ञान तत् बिचारा, ज्योति ज्योत मिलाए।

काल में प्रेत जिनी राम ना पछाता, सत जुग परमहंस बिचारी, द्वापर त्रेतय मानस वरतें, विरले हों मैं मारी।

लखै जन साचा गुरमुख मानव साई आप तरे सगले कुल तारे जिन राम नाम लिवलाई। मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाए जिन मन वस्या से जिन सोहे हृदय नाम वसाए। घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग स्यों रलियां माने जो किश कहे सो पला कर माने नानक नाम वखाणे पैरो माला तीजा। मन सा मन समाए लै कुर शब्दी विचार गुर पूरे ते सो जी पवै फिर मरे न वारो वार। मन मेरे राम नाम आधार गुर प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पुजावन हार रहाउ। सब मैं को रव रया गुर बिन बूझ न पाए गुरमुख प्रकट हुआ मेरा हर प्रभ वन दिन हर गुण गाए। सुख दाता हर एक है होर तै सुख न पाए सतगुर जिनी न सेविया दाता से अंत गए पछताए।

मन सदा रहो सतगुर की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सत लागा, गुर शब्दे पव जल तरना रहाउ। भेख करै बहुत चित डोलै, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिशा भूख यत बहुती, भौंकत फिरे दरबार। गुर कै शब्द मरै फिर जीवै, तिनको मुकत द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवै, हर राख्या उतार। ज्यों

हमें माया मोह खुआया, दुख खट्टे दुख आए, अंतर लोभ हड़क दुख पारी, बिन विवेक परमाए, मन मुख त्रिक जीवन संसार, राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर सिंह दिन न लागे प्यार राऊ।

आपे करता करे कराए, आपे मार्ग पाए, आपे गुरमुख दे वडियाई, नानक नाम समाए, पैरो माला तीजा। मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाते जमजाला, सतगुर करे मेरी प्रतपाला, हर सुखदाता मेरे नाला।

खिन मैं पयान रूप निक्षा तम उपाड हरनाक्ष नखी बिदारिया प्रहलाद लिया उबार। संत जना

तन मन दुख न होए। जुग जुग भगता की रखदा आया, दैंत पुत्र प्रहलाद गायत्री, तर्पण किसु न जाने, शब्दे मेल मिलाया रहाओ। आन दिन भगत करें दिन राते, दुबदा शब्दे खोई, सदा निर्मल है जो सच राते, सच वसिया मन सोई।

प्रहलाद दुविधा ना पड़े, हर नाम ना छोड़े, डरे ना किसे दा डराया। संत जना का हर जियो रखा, दैत्य काल नेड़ा आया। अपनी पैज आपे रख, भगतां दे वडियाई, नानक करना कुछ नखी बिदारिया, अंधे दर की खबर न पाई। राग पैरो महला चौथा, चौपदी कर पहला एको अंकार। सतगुर प्रसाद हर जन संत कर कृपा पगलायण, गुर शब्दी हर पास सुरत समायण।

संगत साध मेल हर गायण गुर मत्ति ले राम रसायण गुर साधु अमृत ज्ञान शरणायण सब कल विख पाप गए गावायण। तुम आपे करता श्रेष्ठ उत्तरायण जन नानक मेल तेरा दास दसायण भैरो महला चौथा। बोल हर नाम सफल सा करी गुर उपदेश सब दुख पर हरी मेरे मान हार पज नाम नर हरि कर कृपा मेलो गुर पूरा सत्संगत संग सिंध पौतरी राव। जग जीवन त्याय मन हर सिमरी कोट कोट अंतर तेरे पाप पर हरी सत्संगत सा तूर मुख परी इशनान कियो अड़सठ सुरसरी। हम मूरख कौहर कृपा करी जन नानक तार्यो तारण हरि भैरो महला चौथा। सुकृत करने सार जमाली हृदय फिर चले तो दनाली हर हर नाम जपो बनवाली कर कृपा मिलो सत्संगत टूट गई माया जमजाली राव। गुरमुख सेवा काल जन काली दिसकड़िए शब्द सची टकसाली हर कामा गोचर कुरी अगम दिखाली बिच काया नगर लदा हर पाली। हम बारिक हर पिता प्रतपाली जन नानक तारो नदर निहाली पैरो महला चौथा। सब घट तेरे

जहां जहां देखा तें हर प्रभ सोए, सब तेरे बस दूजा वर न कोए। जिसको तुम हर रखिया पावे, तिसके नेड़े कोई न जावे। तू जल तल मैयल सब ते भरपूर, जिन्नान कारज बहादरा हजूर। तू जल तल मैयल सब ते भरपूर, नानक हर जप हाजरा हजूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कारयोग सतसंग जी नूं वड पागे हां। जिथे आप जी ने लड़ीवार चल रहे श्री सहज पाठ के राही पावन बाणी का आनंद माणिया है। समा है शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन दा सेवा निभाउण के सत्कार योग भाई परमजीत सिंह जी लुधियाने वाले और तिन्हां दे जिथे पासों पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

काल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की धुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवार

सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू आखे लग करोड़ सच्चे सबतान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ते है न सच

चलत ना अंत। पहिव सिद्ध बुद्ध सो नाथ पहिव चाडाने आकाश। पहिव च जोत महाबल सूर पहिव च आवे जावे पूर।

सुनते हन जित तिलक नाम करतार, सुखम मूर्त नाम निरंजन, काया का आकाश सत्या मन संतोख उपजय देने के विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार, चोरा जा तय कुड़े तय कुड़े आरा खा रबा वेकार,

पौड़ी भगत रह मन भावदे दर सोहन किरत गावदे नानक करमा बहरे डर ढोन लड़ी तावदे एक मूला बुझना पणन होदा पगणाए दे ढाडी गानी जात हुर तम जात सदाई दे मंगाई सुझे ते आए दे।

ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी तुम मात पिता हम बारक ते तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा सगल समगरी तुमरे सूतर तुम ते हो एसो तुमरी कत मित तुम्हें नानक दास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याये जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे करना दावे ताए सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान धरके बोलो जी।

शरण भोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

आवहो संत मिलह मेरे भाई, मेल हर हर कथा करहो। हर हर नाम बोहित है काल जोग, खेवट गोर शब्द तरहो। आवहो संत मिलह मेरे भाई, मिल हार हार कथा करहो। हर हर नाम बोहित है काल जोग, खेवट गुर शब्द तरहो। मेरे मान हार गुण हार उच रहो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए,

हर मीठम हर संतो चाख दिखो गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिख रसहो।

0: गुरमत नानक हर भजहो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सत्संगी जनो वडभागे हाँ जिथे आप जिया ने अमृत वेले दे पावन सजे हुए दरबार दियां हाजरियां भरदियां लड़ीवार चल रहे श्री सहज पाठ दे राही पावन बाणी का आनंद माणिया है। शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन श्रवण कीते ने। सरबादे भले की अरदास तो उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है पवित्र उपदेश आप संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित श्रवण किए हैं। बने हुए प्रोग्राम मुताबक पावन मुख वाक की कथा विचार आप संगत को श्रवण करवाएंगे सत्कार योग भाई गुरशरण सिंह जी चीमा भलके गुरद्वारा साहब विखे नगर मीरपुर माड़ी नवा पिंड मलियां कलां ते मलियां खुरद दियां संगतां वल्लों अते भाई जगीर सिंह परिवार वल्लों दूसरी अखंड पाठ साहिब आरंभ होणगे जिन्हां दे भोग ऐतवार सवेरे 9:30 पैणगे उपरंत हफ्तावरी दीवान सजणगे। नगर निवासियां ते परिवारां वल्लों बेनती है आप जी ने तिन्ने दिन दर्शन देण दी कृपालता करनी जी। तो श्रवण करते हाँ पावन मुख वाक की कथा विचार सत्कार योग भाई गुरशरण सिंह जी होना पासों भुलना चुकां दी खिमा आप संगतां दा धन्नवाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु।

जीरे जाहेगा मैं जाना, आबेगा तो समझ या ना। जात जात देखो बौर ना पेखो, संग माया लपटाना। जीरे जाहेगा मैं जाना, आबेगा तो समझ या ना।

एक ओंकार वाहगुरु जी की फतेह। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदयावे ताए। सब ताई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दिदार का ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुगतियां हटियां जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपया वंड छकिया देख चलाई। तेग वाही देख के अंडठ कीता। तिना

को जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मादा राखा वाहगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब। होर गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले

हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखो गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बेखरसो राम नाम रस राम रसायण हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो राम नाम रस राम रसायण हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुकराना अकाल पुरख वाहिगुरु का वडभागी हो। सतगुरु की पावन हजूरी में जुड़ बैठ के गुरु की पावन बाणी के नाल सांझ बना रहे हो। इस तरह हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करो। कड़ा प्रसाद की देग वरत रही है। गुरु की देग लैण उपरंत गुरु के लंगर तैयार ने। आप जी ने लोड़ मुताबक छक के जाना जी। इत्थे ही इस वेले दे दीवाना की समाप्ति है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

रहाउ। सब सुरती मेल सुरत कमाई, सब कीमत मेल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद मेण सिद्धी कनैना पाईया, करम मिलै नाही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, शिवती भरे तेरे भंडारा। जिस तू दे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखां जीवा विसरै मर जाऊं। आखण औखा साचा नाऊं,